0: पीएचडी के बाद मैं अभी जुनतेंडो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर।
1: यहाँ पे सर हम जानना चाह रहे हैं कि जापानी मुआशरे से मानूस होने के लिए यानी मिक्सअप होने के लिए कौन से तीन काम हैं जो पाकिस्तानियों या गैर मुल्कियों के लिए आप समझते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन ये है कि मकामी कवायद का एहतराम, मसलन कचरे की छांडी के दिन मुकर्रर होते हैं उन दिनों का ख्याल रखना। दूसरा मकामी त्यौहार होते हैं उनमें शिरकत। जापानी ज़बान सीखना है, उसके अलावा आदाब मुआशरत है, मसलन ट्रेन वगैरह में बात करने से ये लोग इस्तेनाब करते हैं। रजाकाराना सरगर्मियों में वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में शिरकत करना है और जापानियों से दोस्ती। आपके ख्याल में तीन सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं?
0: देखें जी, सबसे पहले जब ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक ज़बान नहीं आएगी तो हम लोगों को समझ नहीं सकेंगे।
1: ठीक।
0: और ये कवायद वगैरह जो है ये भी हम तभी फॉलो कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे जब हमें ज़बान आएगी।
2: मेरा नाम तस्मिया है और मैं बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर हूँ। आई विल से कि जापानी से दोस्ती करना ये बहुत आपको हेल्प आउट करता है जापानी के साथ मिलने, और फिर आप कल्चर भी सीखते हैं इस तरीके से एक दूसरे से, और आप अपना खुद का भी सिखाते हैं और उनसे भी खुद सीखते हैं। तो आई विल से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग।
3: मेरा नाम मलिक मुर्तजा है और पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। सबसे पहला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मकामी जो कवायद हैं इनका एहतराम करें।
1: ठीक है।
3: अक्सर ये होता है कि इनको मसला होता है फॉरेनर से, क्योंकि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। हमारे माशरे में उस तरह इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, ये तो इसको अपना एक मज़हब समझते हैं। सफाई जो है हर चीज़ उसका प्रॉपर ख्याल रखते हैं। इवन कि हम जब यहाँ पे आते हैं हम खुद ब खुद उस तरह अडॉप्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता याद आया था कि मैंने रात को भी रोड अगर क्रॉस करना है तो अगर सामने इशारा लगा हुआ है तो मैं क्रॉस नहीं करूँगा, हालांकि कोई गाड़ी नहीं आ रही,
1: कुछ भी
3: इसके बावजूद मैं नहीं करूँगा। क्योंकि ये इनका सिस्टम ही ऐसा है कि वो हमें खुद ब खुद हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें।
4: मेरा नाम हुमेरा अजीज है
1: जी जी,
4: और मैं जापान में तकरीबन 20 साल से मुकीम हूँ। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम गैर मुल्कियों के लिए एक एम्बेसडर हैं, नॉट ओनली हमारे अपने मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के जो फॉरेनर्स यहाँ हैं उन सब के लिए हम एम्बेसडर्स हैं।
1: ठीक।
4: तो अगर यहाँ के आदाब से आगाही नहीं होगी जाहिर है वो फिर इमेज ख़राब होता है। तो वो जो एक अच्छा इमेज बनाना है गैर मुल्कियों का जापान में, तो मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ के जो यहाँ के मुआशरती इकदार हैं अगर हम उनसे आगाही हों हमें उनकी पाबंदी भी करें तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है इमेज हम लोगों का।
1: सही।
5: आपका नाम?
6: साइमा। देखिए हर मुआशरे में कुछ ना कुछ कल्चर्स होता है आपका, यानी कि जिस चीज़ जो चीज़ नहीं करना चाहते, जो चीज़ जो नहीं पसंद करते वो आप मत करें। जब आपने यहाँ पे रहना है तो आप उनको फॉलो करें जिनको जापानीज़ फॉलो करते हैं। उनमें सबसे बात है यही है कि आप फ़ोन पे बैठ के बहुत ऊंची ऊंची बात मत करें, कोई बहुत ज़रूरी हो तो आप फ़ोन करें, मिलते हुए सलाम करें, मतलब जो जो उनके रूल्स हैं उनको आप मस्ट फॉलो करें।
7: मेरा नाम शाहिद अजीज़ है, मैं यहाँ पे 37 साल से।
1: 37 साल से
7: जी। जापानी सीखना?
0: जापानी सीखना,
7: जापानी अगर आप नहीं सीखोगे तो आप सक्सेस नहीं होते इस मुल्क में।
8: मेरा नाम भीम हाशिम है और मैं जापान में पैदा हुआ।
0: अच्छा
8: जी। मेरे ख्याल में लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लैंग्वेज आती होगी आप जापानीज़ से दोस्ती भी कर सकते हैं और आप भी यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है लैंग्वेज फर्स्ट नंबर पे।
0: फर्स्ट नंबर है जी। अच्छा जी।
5: आपका नाम?
9: सबा। जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ के फिर रूल्स भी फॉलो करना ज़रूरी है। इस वजह से मैं समझती हूँ कि अगर आप जापान जैसे मुल्क में रहना चाहते हैं तो फिर उधर के रूल्स फॉलो करें और उधर की लैंग्वेज भी सीखें।
10: मेरा नाम मोहम्मद नौमान है, मैं पाकिस्तान में कोहाट से ताल्लुक रखता हूँ और फैमिली के साथ यहीं पे मुकीम हूँ। जो सबसे ज़रूरी पहले नंबर पे जो मैं वो समझता हूँ वो है हमें इनकी ज़बान और कल्चर सीखना।
5: अच्छा,
10: क्योंकि अगर हम इनकी ज़बान और कल्चर को थोड़ा समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ों को खुद ही मतलब हम समझना शुरू हो जाते हैं। मतलब पड़ोसियों के साथ हमने किस तरीके से रहना है, दोस्तों के साथ बर्ताव करना, बात ये लोग एहतराम के तरीके से हर किसी से बात करते हैं तो वो चीज़ का ख्याल रखना, तो वो सारी चीज़ें इनके कल्चर में खुद ही हमें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं।
11: मेरा नाम हमाद अली है और मैं जापान में पिछले 4 साल से हूँ और मैं यहाँ पर IT इंजीनियर हूँ।
1: आपने आदाब मुआशरत से आगाही का इंतखाब क्यों किया?
11: जी इसलिए किया कि सबसे पहले जो है ना ये एक डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं, एक डिसिप्लिन मुआशरा है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और एक आपको सबसे पहले जो उनका मिलने का अंदाज है जिसमें वो सबसे पहले सलाम करते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हमारा दीन भी हमें ये चीज़ सिखाता है।
12: सब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने हाजरीन से ये भी सवाल किया कि आप इंटरनेट या रेडियो पे किन मौजूदात पर हमारे प्रोग्राम सुनना चाहेंगे?
1: प्रोग्राम का सबसे मशहूर मौजू जिसके बारे में हर कोई देखना और सुनना चाहता था वो था जापानी ज़बान सीखना। ज़्यादा दिलचस्पी के दीगर मौजूदात में सकाफत और तर्ज ज़िंदगी और आफात से बचाव और तैयारी के मौजूदात भी शामिल हैं।
12: हमने इस हवाले से भी कई लोगों के इंटरव्यू किए
1: तो आइए आपको सुनाते हैं। آپ ریڈیو یا انٹرنیٹ پر ہماری نشریات سن سکتے ہیں. فی الوقت ہم قدرتی آفات سے بچاؤ کی تیاری، حالات حاضرہ، ثقافت و طرز زندگی، تجارت، ٹیکنالوجی، جاپانی سیکھیں، جاپانی زبان سکھاتے ہیں، بچوں کا پروگرام کرتے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، تفریحی پروگرام ہیں، سفر و سیاحت ہے، اسپورٹس ہے، سائنس اور فطرت ہے، اور پاپ کلچر اور فیشن ہے. ایز اے پاکستانی، ایز اے اردو بولنے والے، آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کیا سننا چاہتے ہیں یا کیا دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر؟
10: یہاں پہ قوانین، اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، ان کو بدلتے قوانین اور ان چیزوں کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کے لیے حالات حاضر کے متعلق، مطلب جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق اپڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے. تو حالات حاضر،
2: سب سے پہلا تو میں کہوں گی جو ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ جاپان میں بہت سارے یو نو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مطلب ہمیں لٹرلی چاہیے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں انفارمیشن کے، ایون وہ اردو میں ہو، کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کو جاپنیز نہیں آتی ہے، انگلش نہیں آتی ہے، تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا نا.
3: آئی تھنک اسپورٹس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ایک چھوٹے سے بچے بھی ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، تو بچے صرف ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک اگر ہم اسپورٹس جو ہے اس سائڈ پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہو.
5: سب سے مین ہے بیسیکلی وہ نمبر ون ہی ہے، قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے جو تیاری ہے، تو اس سے جو بیسک جو معلومات ہے وہ ہونی چاہیے.
1: ٹھیک.
5: پارٹنرز کو
1: سفر و سیاحت. اچھا، جاپان کے اندر ہے، جاپان سے باہر؟
4: آئی تھنک جاپان کے اندر.
1: کون کون سی جگہ ہے آپ جہاں دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے؟
4: وہ جگہ جو ان سین ہے.
1: بچوں کے جو پروگرام آپ نے انتخاب کیا،
4: جی
1: ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے بچوں کو کیا سکھائیں؟
4: موضوع جیسے سیوک ریسپانسبلٹی،
1: مثلاً اس میں
4: مثلاً کہ جاپانی بچے جو ہیں ان کے اندر یہ بہت، وہ لوگ کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں،
1: صحیح،
4: لیکن ہمارے بچوں میں ہم نہیں کر پاتے. تو اگر ہمیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں، لائن اپ ہونا، اپنی باری کا انتظار کرنا، اور اپنی ہار مان لینا،
13: صاف رکھنا اپنے ایریا،
4: ہاں
1: صفائی
4: کو نہیں.
14: بزنس اور ٹیکنالوجی.
1: بزنس اینڈ ٹیکنالوجی،
14: کیونکہ دیکھیں بزنس اور ٹیکنالوجی، آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، اے آئی، ہر کسی کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے.
15: اچھا، میرے خیال سے جیسے جو پاکستانی ہیں جن کو ابھی لینگویج نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ادھر کی نیوز کا پتہ چلے، تو اس کے لیے تو آئی تھنک کہ یہ حالات حاضرہ ہے.
1: سروے میں حصہ لینے والے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ.
12: سامعین، یہ فیسٹیول پاکستانیوں کے لیے نہ صرف مل بیٹھنے کا، بلکہ اپنی ثقافت کے پوشیدہ پہلوؤں کی دریافت کرنے کا بہترین موقع تھا. اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھیں جاپان کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، دونوں کے درمیان میلوں کی دوری ہے، لیکن اس میلے میں آپ نے پوری پاکستانی ثقافت دکھائی، جاپانیوں کو اپنا سارا متعارف کرایا، بڑی ہی زبردست کوشش ہے.
1: امید ہے کہ یہ فیسٹیول جاپان اور پاکستان کے عوام کے لیے مستقبل میں مزید قریبی تعلقات استوار کرنے کی بنیاد بنے گا.
12: جی خلیل صاحب، اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کرنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے.
1: تو این ایچ کے ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
16: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. سامعین، آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu.